और जो रहते हैं 8:16 हेलो सब मैं मरामिंग ना तापुस गई हूँ मंदे हैं parang pagod kayo ngayong Monday, ah. Ay, parang wala naman kayong masyadong ginawa ngayong Monday.